0: A prominent businessman enters into an illicit affair with a former employee. She and her husband are now blackmailing him. Going to the police would turn his affair into a matter of public record. To keep his marriage intact and his mistake hidden, he turns to the only option left: a private detective agency run by the husband and wife team of Naman and Nidhi Jain.
1: Hello.
0: The detectives have the identities of the blackmailers. What they need now is an address.
1: Sir, I'm talking to you. Your bank documents have come to your address, but the address is not traceable. And the courier person is standing there. Now, tell me your exact location so that the person can deliver.
2: Sir,
1: documents are important, sir. No, it will return. No,
2: no, no.
1: So, alternate address, sir.
0: With no address to go on, the team needs to improvise. Naman discusses options with his team.
3: अब क्योंकि उसका घर नहीं मिल रहा, सारे एड्रेसेस पोस्ट ऑफिस में जाके चेक कर लिए, इन्होंने शायद एड्रेसेस ही अपने डाटाबेस में गलत मेंशन किए हुए हैं, तो हमें इसका घर तो ट्रेस हुआ नहीं। सब्जी मंडी की आपने लोकेशन दी थी, सब्जी मंडी में भी जाकर उन्होंने पूरी टीम ने चेक कर लिया, सब्जी मंडी में भी कोई दिखा नहीं कहीं पर भी पर्सन। तो ये मैंने बात क्लाइंट को बता भी दी है। तो अब क्लाइंट ने क्या किया है कि अब हमारे पास एक ही तरीका था, जो आप जैसा आपने फ़ोन पर भी सजेस्ट किया था मुझे कि भाई इसको बेट डालनी पड़ेगी। अब
0: Naman and Nidhi's detective agency originally investigated corporate espionage. But in a post-pandemic world, the growing market isn't corporate, but the business of love.
3: Out of all the cases that we undertake, pre-matrimonial cases is the maximum number of cases that we get. Our company used to book, when we started, around 2 to 3 cases in a month. Right now we are doing 150-200 cases in a month.
0: In India, marriage is more than a bond between two people. It's a union between families. More than 90% of marriages in India are arranged. Love marriages, on the other hand, are typically seen as an act of rebellion. Unfamiliar with this relatively recent approach, parents are turning to detectives for help. Nitesh and Vandana Sethi are concerned about their daughter, who has fallen in love.
3: किसी भी तरीके शादी करना ही नहीं चाहते हैं, तो फिर हम जो है उनके सिर्फ नेगेटिव्स को ढूंढते हैं, ठीक है, ताकि आप डॉटर को कन्विंस कर सकें दैट ही इज नॉट द राइट बॉय फॉर हर।
0: बैकग्राउंड चेक्स लाइक प्रीवियस और करंट मैरिजेस, अफेयर्स, मेडिकल हिस्ट्री, इवन पर्सनल इंडल्जेंसेस लाइक स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग आर इंक्लूडेड इन द ऑडिट।
3: कि हम लड़के को फिजिकली फॉलो करते हैं और उसकी एक्टिविटीज़ को वॉच करते हैं कि वो दिन भर में कहाँ जाता है, किससे मिलता है और क्या करता है, जस्ट इन केस अगर वो किसी भी गलत एक्टिविटी में पाया जाता है, जैसे कि स्मोक करते हुए, ड्रिंक करते हुए, ड्रग्स लेते हुए, या फिर किसी और गर्ल से अगर वो मिल रहा है, किसी बैड हैबिट में है, तो किसी रॉन्ग कंपनी में, तो हम उस केस में उसे कम्प्लीट वीडियोग्राफिक एविडेंस कलेक्ट करते हैं। क्या होता है कि जो चीज़ आपके लिए नेगेटिव है ना, वो ज़रूरी नहीं है कि आपकी डॉटर के लिए

0: नेगेटिव हो। बेसिकली ये केस है कि जिसमें देयर डॉटर हैज फॉलन इनटू लव विद अ बॉय एंड द फैमिली इज अ वेरी रिच फैमिली राइट एंड वेरी दे आर बिग इंडस्ट्रियलिस्ट एंड नाउ द डॉटर इज फॉलन टू लव विद अ बॉय हु डज नथिंग एट ऑल एंड दे हैव हर्ड वेरी रॉन्ग थिंग्स अबाउट द बॉय दे हैव ट्राई टू कन्विंस देयर डॉटर बट शी इज नॉट रेडी टू एग्री टू एनी थिंग पीपल स्टार्ट यू नो इंटीग्रेटिंग एंड सेविंग मनी फॉर दिस फॉर हिज मैरिज right from the start from the time the child is born and they have got a lot of dreams attached to this you know children's wedding but now once the children have decided to go ahead with such a kind of marriage they feel that what have we earned for we cannot predict the outcome of any case but as far as I could hear them I found out you know the boy to be a little fishy
1: meanwhile The detectives begin a digital forensic investigation and assemble a dossier on the unsuspecting young man.
2: Another part that I'll be covering is voter ID of this individual that will help us to check the address that is mentioned in the form if he's residing there along with his family. And yes, in this case, we have his details available along with his family members is also further details available after we download the electoral roll, we have the data.
1: They discover the boy has two separate registered residential addresses. Other red flags are raised.
2: It's a strike of entity. So hinting towards that he was associated with this entity, but no longer now. So question mark on the job profile. What kind of work he's doing? Because if he's saying that if he's working, he's earning sufficient. So now question comes, where is he earning?
1: It's time to gather intelligence on the ground. Nidhi heads out with trainee detective Kajal.
3: तो जैसे field verification के लिए हम लोग जाएंगे तो वहाँ पे उनके neighbours या फिर relatives या फिर friends से हम लोग बात करके और details निकाल सकते हैं तो हम लोग को investigation और easy पड़ेगा और जैसे कि मैं loan investigation officer बन के जा रही हूँ तो माइट बी आई गेट मोर डिटेल्स ऑफ इट और इन्वेस्टिगेशन में वो बहुत ईजी पड़ जाएगा हम लोग को बेसिकली हम उनके अगर घर जाएंगे तो हम उनको पता चलेगा कि हम इन्वेस्टिगेशन करने आ रहे हैं तो हम लोग इन्वेस्टिगेशन करने उनके घर नहीं जाएंगे हम उनके नेबर्स से पूछताछ करेंगे या फिर उनके रिलेटिव्स अगर रहे तो उनसे पूछताछ कर सकते हैं फिर उनके फ्रेंड्स रहेंगे उनसे बात कर सकते हैं हम लोग
4: और अगर आप किसी पोजिशन पर खड़े हो जैसे ये सपोजिंगली ये घर है आपको यहाँ पोजिशन लेनी है तो आपको डे वन जब आपका पोजीशन डे वन है आज एक घंटे पहले आके या दो घंटे पहले आके देखना है कि कहाँ आप अपनी पोजीशन मेंटेन कर सकते हो जैसे अब ये घर है ये कॉर्नर हाउस है आप यहाँ पर रह सकते हो यहाँ पे चाय वाला है यू कैन इजीली स्टैंड यहाँ पे दो घंटे तीन घंटे भी रहोगे कोई नोटिस नहीं करेगा सेकेंड थिंग ये देखना है कि उस घर में या उसके बराबर वाले घर में CCTV तो नहीं है आजकल मोस्टली हाउसेज में CCTV है तो अगर CCTV है तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि CCTV के एक्सेस में नहीं आना चाहिए आपकी पोजीशन वहां हो कि CCTV आपको कैप्चर ना कर सके
1: इट्स टाइम फॉर द रुकी डिटेक्टिव टू पुट हर स्किल्स टू द टेस्ट
3: नमस्ते मैं काजोल बैंक से हूँ लोन जी मैम आपका कोई लोन नहीं है वेरिफिकेशन के लिए आई हूँ आपके पास में कोई रहते हैं उन्होंने लोन लिया है तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल चाहिए था हाँ हाँ ओके तो यहाँ पे रहते ही नहीं है
5: मम्मी पापा तो उनके यही रहते हैं कम रहता है
3: हाँ हाँ
5: सारी रहता है
3: और उनकी मदर
5: मदर तो उनकी हाउसवाइफ है
3: ओके उनकी हाँ उनकी मदर उन गारंटर है हाँ
5: पहली बार आंटी के बारे में पूछ रहा हूँ अच्छा मुझे एक्सपायर हो चुकी है उनको 8 साल हो गए
3: उनको समझी नहीं मैं
5: तो है हाँ हाँ पहली वाइफ थी
3: ओके
5: वो 8 साल हो गए हम
3: हाँ हाँ
5: अब जो है
3: हाँ
5: सेकंड मॉम स्टेप मॉम
3: हाँ उनका नाम क्या है
5: उनका नाम है
3: ओ
5: अब तो पापा से भी नहीं बनते
3: अब पापा से भी रिलेशन अच्छे नहीं है
5: अच्छे नहीं है साल दो साल में एक दो बार आ गया
3: हाँ हाँ कोई बात नहीं मैडम थैंक यू डिटेल्स देने के लिए आपके समय के लिए धन्यवाद
1: Parents can choose how deep they want to dig. Most start with a $3,000 package. Unearthing deeper secrets costs more.
0: Ask anyone. So love and marriage are two different things for people. Even, you know, people who have been into relationship for 8 years, 10 years time, they come to us to get their partners energy because now they're entering into married relationship. Right? So which I think is very prudent. Right? Everybody should get background checks done.
6: I remember jab humne initially business start kiya tha, talking about 20 years, 25 years back. Us time arranged marriage ya love marriage ke liye koi proposal hamare se aata tha check ke liye. To unke words ye hote the ki, I know it's not good. ये अच्छी बात नहीं है कि मैं ट्रस्ट नहीं कर रहा और मैं बैकग्राउंड चेक करा रहा हूँ बट आई वॉन्ट क्योंकि कुछ सस्पिशन है कुछ डाउट्स हैं बट अभी इट्स वेरी चेंज एवरीबडी वॉन्ट्स कि बैकग्राउंड चेक होना चाहिए इट इज मस्ट
1: व्हाइल लव मैरिजेस रिप्रेजेंट अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ ऑल यूनियंस इट इज अ ग्रोइंग फिनोमेनन सो लव ऑडिटिंग हैज आल्सो बिकम अ ग्रोइंग बिजनेस
7: Saturday, Japan Hour takes on Tokyo, Edo style. Brush up on tradition. Savor the art of Edo style sushi. And picture the past through Ekeyoe and Edo Kiriko. Then, from traditional artistry to artful living, step inside the creative world of Petals Tokyo. Japan Hour, Saturday on CNA.
8: Japan Hour is brought to you by Sumitomo Corporation. MUFG, committed to empowering a brighter future. Zip Air, all flights, all seats, free high-speed Wi-Fi available. IHI. And Takashimaya Singapore, celebrating 33 years of timeless finesse. Join innovators from across the globe in transforming ideas into impact. Discover the latest tech shaping the future. Meet the startups spearheading innovation. Gain insights and collaborate with players in the community. Don't miss Switch 2026, the biggest global innovation event yet. Only from 27th to 29th October at Marina Bay Sands. Register now to secure your spot among the greats.
9: When I'm driving, I will tend to doze off.
10: I've just always felt tired and sometimes out of control.
11: I'm so tired of thinking, I just want to pick up my phone and off my brain.
12: Six tired Singaporeans meet digital medicine expert Professor Dean Ho to learn what's draining their energy.
13: My brain is not draining.
14: Your numbers more closely reflect those who might be in their 50s or maybe even 60s.
15: What the f***?
12: Tracking their bodies day by day, they'll rethink how they sleep, eat, and exercise.
16: Awesome set.
17: I can sleep much earlier to have more energy for the next day.
18: Small adjustments had some pretty impactful benefits.
19: Your total testosterone went up almost 50%.
15: Serious?
18: When you take care of your biology takes care of you.
20: Cheers.
18: Well done, well done.
12: Restless, biohacking better health. Watch it on demand at cna.asia.

0: if the match is right. As rural Indians migrate to urban centers, old village connections are lost. Settings like these have become a trusted way for parents to find the right partner for their child.
1: NRI ladki, UK London mein working hai. Sonam Sharma, Punjabi family. June 91 born. 34 saal. Kad 5 feet 6. B.Tech in Computer Science, 80,000 pound, Great Britain pound, salana package hai, koi sajjan baat karna chahta hai, koi sajjan.
2: We announced Mr. So-and-so, any girl interested in that boy, they look whatever, if there's nobody interested, then we pass, the next kid. Same left side.
3: People are meeting
2: and we haven't seen anything wrong, obnoxious, nothing. We are very simple here and we help people to get the kids registered.
4: मुझे दो एक महीने हो गए यहाँ आते हुए और बेटे के लिए मैं ढूंढ रहा हूँ रिश्ता. तो अच्छी जगह है यहाँ पर, आपस में सब मिलते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, पहचान लेते हैं, देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं. और सबसे अच्छी बात तो यही है, पुराने ज़माने से अलग तो नहीं है, थोड़ा सा तरीका बदल गया. अरेंज मैरिज तो सबसे अच्छा है, अरेंज मैरिज तो सबसे अच्छा कल्चर है. लव मैरिज के अंदर तो जब प्यार किसी से हो गया, लव हो गया, तो उसके बाद तो कोई कल्चर ही नहीं है.
0: बट व्हाइल ट्रेडिशन ऑफर्स अ सेफ्टी नेट, स्टेपिंग इनटू द शैडोज कैन लीड टू अ ट्रैप. A blackmailer is holding a prominent businessman to ransom. He has a compromising video of the businessman. In exchange for this video, he wants $200,000 in cash. The detectives use a delaying tactic. They deliberately miss the deadline.
5: No. रात में सुबह में जहां मर्जी मिल लेंगे, पेमेंट आएगी मेरे पास, 100% आएगी.
0: The businessman gets the blackmailer to agree to a reduced sum of $27,000. The detectives have just 2 days to find the extortionist. Otherwise, the victim will have to cough up the cash. The clock is ticking. The blackmailer's wife is the businessman's former office manager. She was in charge of collecting payments. The enterprising employee diverted company funds into her own bank account and was caught red-handed. She then makes a proposition.
6: Now she started crying. Right, that, you know, my husband beats me up, he, you know, he abuses me at home, you know, he needs 15,000 rupees every month from me, what do I do, like, you know, and I cannot return the money back to you, but, you know, I'm ready to do anything that you want me to do for you.
0: The businessman thought he was being compensated for his loss with a fling, but she was two steps ahead. While he was booking a hotel room, she plotted.
6: And this time when she met him there, you know, she asked her client to remove his clothes, right? Once he removed his clothes, you know, she took out his mobile and started shooting our client.
7: Five addresses of a subject.
0: If the video goes public, it would destroy his marriage and career. The detectives need an address.
8: What have you identified?
0: So far, nothing.
9: I tell you. उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो ये सोच रहा है कि वल्नरेबल टारगेट है, 65-year-old पर्सन है और अब ये फंसा हुआ है, कर तो कुछ सकता नहीं है. उसकी वाइफ को पता है कि इसकी वाइफ है, इसके बच्चे हैं, उसको ये मालूम है कि अगर इसने कुछ भी किया तो ये हील बी ना बिगर सूप. सो लेट अस से इफ देयर इज एनी क्राइसिस एट ऑल, इट बिकॉज वी आर डीलिंग विद क्रिमिनल्स, वी आर यू नो डीलिंग विद द डार्क सीक्रेट्स ऑफ पीपल, वी आर डीलिंग विद डार्क थिंग्स ऑल द टाइम.
0: While the team hunts for the blackmailers,
10: a different kind of tragedy plays out. A housewife, married for 12 years, has just made a startling discovery about her husband.
11: Yeah, hi. Please tell me.
12: Shockingly, I found out that he's not straight and he's a gay.
11: After 12 years of marriage?
12: Yeah, I mean, he's not married, but that was awkward for me because he always used to resist being intimate with me. Because he would go with me in different ways. He used to take care of the family, of my daughter also.
11: Daughter?
12: Yeah.
11: So how come you have a daughter?
12: I'm 5 years.
11: Oh, okay.
12: But now when I realize this, I'm just thinking I cannot live with this lie. I have to end this marriage.
10: To get custody of a daughter and parental support, she needs more than just suspicion. She needs evidence, admissible, undeniable proof. The team decide to hide a listening device in the family car.
6: Brother, जो हमें कार में बग यूज़ करना है ना, वो ये GSM बग यूज़ करेंगे, ठीक है? और इसका ना मुझे बैटरी साइज़ इंक्रीज़ चाहिए, ठीक है? क्योंकि मुझे चाहिए इसमें कम से कम 3 दिन का बैटरी, ठीक है? तो ताकि वो जो ना उसको रिप्लेस अगर करे, 3 दिन में काफी रिकॉर्डिंग आ जाती है। Right, हमें क्लाइंट को देने से पहले हमें टेस्ट करना है तो हम इसको हमेशा क्या करते हैं देने से पहले अपनी गाड़ी में लगा के जरूर कुछ टेस्ट करते हैं खुद की हाउ इज इट वर्किंग हाउ इज फंक्शनिंग
13: बस देखना स्लाइड ना हो स्लाइड आराम से हो जाए
14: तो अगर हम लीगली देखें सो वी आर सेफ क्योंकि उनकी अपनी कार है अपने कार में वो खुद लगा रही है सो हम और उन्हीं को एक्सेस दे रहे हैं वो खुद ही सारी रिकॉर्डिंग्स चेक करेंगे
15: और हम जब भी बग प्लेस करते हैं क्लाइंट की कार में और क्लाइंट की प्रेजेंस में ही करते हैं नॉट इन हर एब्सेंस सो साथ में है तभी हम प्लेस कर रहे हैं सो इन दिस केस हमारे पास सिर्फ 2-3 मिनट्स हैं तो हमें बहुत जल्दी बग प्लेस करना होगा

0: ठीक है, तो ऑब्वियसली यू नो शी इज़ ऑल अंडर प्रेशर कि दे वुड ऑल्सो गेट अरेस्टेड. इट्स नॉट अर कि शी कैन फाइल अ फेक केस नाउ एंड शी विल बी लेफ्ट. तो अब जो है ऑब्वियसली उससे अगेंस्ट आएगा. तो
1: सबसे बड़ा चैलेंजिंग तो यही था कि भाई एक तो हम एक्सट्रॉशनिस्ट को पकड़ लें, दूसरा जो एविडेंसेस जो भी हो जिसके बेसिस पे वो ब्लैकमेल कर रहे थे वो सारे हम लेके और वो रिकवर हो जाए. बस
0: पहले स्मार्ट गेम प्ले किया, शी वॉज रोमिंग अराउंड, तो इस वजह से हम उसकी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे जाके ट्रेस करके वहाँ से उसको उठा नहीं पाए. वो सबसे चीज़ चैलेंजिंग लगी. और फिर जब वो आ गई थी और एकदम से आगे उसने हंगामा मचा दिया, मैं रेप का केस डाल दूंगी, पीछे से किसी ने उसको समझाया होगा तो उसको इंटेंसिटी नहीं पता सिचुएशन की, वो आते ऐसे बोलने लगी, तो हमें लगा कि कोई और बहुत बड़ा हंगामा ना हो जाए. बट जब उसने रियलाइज़ किया कि इंटेंसिटी इस केस से कितनी ज़बरदस्त है, और जब उसके हस्बैंड ने भी उसको बताया, उसके हस्बैंड के भाई ने भी उसको बताया, तो फिर वो एकदम से सबसाइड हो गई. नाउ तो अब वो रो रहे हैं आप तो दोनों.
1: नहीं ठीक है, हमारे को भी यही डर था कि कहीं वो जो लेडी है वो एविडेंसेस को कहीं छुपा दे या वो कर दे, तो वो अल्टीमेटली उनको हमने पकड़ा तो उसे.
2: The compromising video is secured. For the businessman, it's a quiet drive home to a wife and family who will never know how close they came to seeing him in the tabloid news. The case is closed. His secret buried. His public image intact.
3: Go casually, hello. Talk to him, and just hello. Be in the moment.
2: Meanwhile, the housewife suspicious about her husband's sexuality may finally get the conclusive answers she needs. An undercover agent is heading to meet her husband. He's equipped with a special jacket. Hiding in it is a pinhole video camera. If all goes to plan, it will record everything that happens.
3: Just started recording. All the best.

0: But even as solar development expands, not all nearby villages have access to electricity. At night, Bhagirath, one of Kishanji's brothers, returns to a house that still has no grid electricity. While transmission lines may run nearby, extending power to scattered desert settlements has been a challenge.
1: चारों तरफ सोलर प्लांट लगा हुआ है, घर में लाइट नहीं है। वो कोई छोटी मोटी लाइट बैंटरी बूंटी से उसे काम चलाते हैं और चारों तरफ सोलर की लाइट है। हमारा लाइट डानी में नहीं, मकान में लाइट।
0: His family relies on a small battery-powered light from a portable solar panel, enough only for basic needs.
1: नहीं है लाइट वजह से हमारे फसल नहीं ज़्यादा उत्पादन कर सकते हैं। लाइट होती तो फसल ज़्यादा उत्पादन कर सकते हैं।
0: For families like Bhagirath's, the benefits of mass solar farm expansion that's happening in his very own village remain out of reach.

0: In Norang Desar village, another challenge shapes daily life: water. Santosh and Suraibane begin the day by walking more than 2 kilometers to fetch water for their families and livestock.
1: हमारे पानी की बहुत दिक्कत आ रही है हमारे पास में गांव के पास में पानी कभी कभी मिलता भी नहीं है
2: दूर जाके लाना पड़ता है लगभग 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर दूर जाके पैदल जाके लाना पड़ता है
0: In many drought prone parts of India water is still delivered by tanker trucks a temporary lifeline for villagers when local supplies run dry
1: हमारे टैंकर से मंगवा रहे हैं वो टैंकर 5-7 दिन नहीं आ रहा है गर्मी में तो बहुत ही सारा ऊंट और पशु है वो भी तीसरा रहता है
0: With the arrival of solar farms, that limited water supply is now shared. Panels need to be cleaned regularly, especially

0: Lee in the dusty desert.
1: हमारे यहाँ एक समस्या बहुत बड़ी समस्या है कि हमारे यहाँ सोलर प्लांट होने के कारण हमारे यहाँ टैंकर है वहाँ चले जाते हैं यहाँ पर नहीं आते हैं तो ये बहुत बड़ी आपत्ति आ रही है हमारे लिए कि पानी यहाँ नहीं पहुँच रहा है हमारे लिए
0: In the Thar Desert, where water has always been scarce, the demand for solar is placing new pressure on an already limited resource.

0: Rajasthan's solar expansion is transforming the desert landscape. The rapid growth has raised difficult questions about land for some. At the same time, solar is also bringing clear benefits. Farmers like Ram Dayal Chowdhury are seeing that firsthand.
1: ये प्रधानमंत्री कुसुम योजना है इनमें हमारे को लाभ मिलते हैं छोटे मोटे किसानों के लिए बहुत फायदा हुआ है मेरे पास 15 बीघा जमीन है उसमें मैंने ये सोलर पंप लगाया हुआ है
0: Ram receives subsidies to install solar pumps for irrigation, reducing his dependence on unreliable electricity.
1: इसी फायदे की वजह से मैंने ये लगाया है। ये 10 पंप और 10 किलोवाट का सोलर पंप है। करीब इनकी लागत 4.5 लाख रुपया से लगवाया है ये। इनसे फायदा हमारे को होता है ये मतलब बिजली नहीं लगती है बिजली का हमेशा बिल भरना पड़ता है इनका एक बार पैसा लगा हमारे को।
0: Instead of monthly bills, it's a one-time investment. And over time, that has made a difference.
1: वो फायदा हुआ हमारे को। अभी मेरे को एक बार ही पैसा देना पड़ता है। ये 10 HP की मोटर चल रही है हमारे यहाँ। इनका कोई खर्चा उर्चा नहीं है। ये 9 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक बराबर चलती है कंटिन्यू।
0: More than 2 million farmers across India currently benefit from this system.
1: कुल मिला के ये मतलब राजस्थान के अंदर ये फायदेमंद चीज है ये हमारे पहले लाइट से चलता था लाइट में हमारे वो परेशानी ज्यादा होती थी वो 6 घंटा लाइट देते थे कभी कटौती कर देते थे कभी 4 घंटा भी कर देते थे अब हमारे को मतलब 14 घंटा गर्मी में 12-14 घंटा तक इन सोलर पंप से लाइट चलती है हमारे को डबल फायदा हो गया
0: फॉर फार्मर्स लाइक राम Solar power has become a practical solution.

0: A prominent businessman enters into an illicit affair with a former employee. She and her husband are now blackmailing him. Going to the police would turn his affair into a matter of public record. To keep his marriage intact and his mistake hidden, he turns to the only option left. A private detective agency run by the husband and wife team of Naman and Nidhi Jain.
1: Hello.
0: The detectives have the identities of the blackmailers. What they need now is an address.
1: Sir, I'm talking to you. Your bank documents have come in the address, but the address is not traceable. And the courier person is standing there. Now, tell me your exact location so that the person can deliver.
2: Sir,
1: documents are important, sir. Otherwise, it will return. No, no, no.
2: No,
1: no. So, alternate address, sir.
0: With no address to go on, the team needs to improvise. Naman discusses options with his team.
3: अब क्योंकि उसका घर नहीं मिल रहा सारे एड्रेसेस पोस्ट ऑफिस में जाके चेक कर लिए इन्होंने शायद एड्रेसेस ही अपने डेटाबेस में गलत मेंशन किए हुए हैं तो हमें इसका घर तो ट्रेस हुआ नहीं सब्जी मंडी की आपने लोकेशन दी थी सब्जी मंडी में भी जाकर उन्होंने पूरी टीम ने चेक कर लिया सब्जी मंडी में भी कोई दिखा नहीं कहीं पर भी पर्सन तो ये मैंने बात क्लाइंट को बता भी दी है तो अब क्लाइंट ने क्या किया है कि अब हमारे पास एक ही तरीका था जो आप जैसा आपने फ़ोन पर भी सजेस्ट किया था मुझे कि भाई इसको बेट डालनी पड़ेगी अब
0: Naman and Nidhi's detective agency originally investigated corporate espionage. But in a post-pandemic world, the growing market isn't corporate, but the business of love.
3: Out of all the cases that we undertake, pre-matrimonial cases is the maximum number of cases that we get. Our company used to book when we started around 2 to 3 cases in a month. Right now we are doing 150-200 cases in a month.
0: In India, marriage is more than a bond between two people. It's a union between families. More than 90% of marriages in India are arranged. Love marriages, on the other hand, are typically seen as an act of rebellion. Unfamiliar with this relatively recent approach, parents are turning to detectives for help. Nitesh and Vandana Sethi are concerned about their daughter, who has fallen in love.
4: किसी भी तरीके शादी करना ही नहीं चाहते हैं तो फिर हम जो है उनके सिर्फ नेगेटिव्स को ढूंढते हैं ठीक है ताकि आप डॉटर को कन्विंस कर सके दैट ही इज नॉट द राइट बॉय फॉर हर
0: ओके सो जस्ट वन वे बैकग्राउंड चेक्स लाइक प्रीवियस और करंट मैरिजेस अफेयर्स मेडिकल हिस्ट्री इवन पर्सनल इंडल्जेंसेस लाइक स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग आर इंक्लूडेड इन द ऑडिट
4: कि हम लड़के को फिजिकली फॉलो करते हैं और उसकी एक्टिविटीज़ को वॉच करते हैं कि वो दिन भर में कहाँ जाता है किससे मिलता है और क्या करता है जस्ट इन केस अगर वो किसी भी गलत एक्टिविटी में पाया जाता है जैसे कि स्मोक करते हुए ड्रिंक करते हुए ड्रग्स लेते हुए या फिर किसी और गर्ल से अगर वो मिल रहा है किसी बैड हैबिट में है तो किसी रॉन्ग कंपनी में तो हम उस केस में उसे कंप्लीट वीडियोग्राफिक एविडेंस कलेक्ट करते हैं क्या होता है कि जो चीज़ आपके लिए नेगेटिव है ना वो ज़रूरी नहीं है कि आपकी डॉटर के लिए भी नेगेटिव हो
3: Basically, ये केस है कि जिसमें their daughter has fallen into love with a boy and the family is a very rich family, right? And they are big industrialists and now the daughter has fallen into love with a boy who does nothing at all and they have heard very wrong things about the boy. They have tried to convince their daughter but she is not ready to agree to anything. People start, you know, integrating and saving money for this for his marriage. Right from the start, from the time the child is born. And they have got a lot of dreams attached to this, you know, children's wedding. But now, once the children have decided to go ahead with such a kind of marriage, they feel that what have we earned for? We cannot predict the outcome of any case. But as far as I could hear them, I found out, you know, the boy to be a little fishy.
0: Meanwhile, the detectives begin a digital forensic investigation and assemble a dossier on the unsuspecting young man.
5: Another part that I'll be covering is voter ID of this individual that will help us to check the address that is mentioned in the form if he's residing there along with his family. And yes, in this case, we have his details available along with his family members is also further details available after we download the electoral roll, we have the data.
0: They discover the boy has two separate registered residential addresses.
2: other red flags are raised.
5: It's a strike of entity. So hinting towards that he was associated with this entity, but no longer now. So question mark on the job profile. What kind of work he's doing? Because if he's saying that if he's working, he's earning sufficient. So now question comes, where is he earning?
2: It's time to gather intelligence on the ground.
1: Or something, ki aap easily merge ho sako.
2: Nidhi heads out with trainee detective Kajal.
6: तो जैसे फील्ड वेरिफिकेशन के लिए हम लोग जाएंगे तो वहाँ पे उनके नेबर्स या फिर रिलेटिव्स या फिर फ्रेंड्स से हम लोग बात करके और डिटेल्स निकाल सकते हैं तो हम लोग को इन्वेस्टिगेशन और इजी पड़ेगा और जैसे कि मैं लोन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बन के जा रही हूँ तो माइट बी आई विल गेट मोर डिटेल्स ऑफ इट और इन्वेस्टिगेशन में वो बहुत ईजी पड़ जाएगा हम लोग को बेसिकली हम उनके अगर घर जाएंगे तो हम उनको पता चलेगा कि हम इन्वेस्टिगेशन करने आ रहे हैं तो हम लोग इन्वेस्टिगेशन करने उनके घर नहीं जाएंगे हम उनके नेबर्स से पूछताछ करेंगे या फिर उनके रिलेटिव्स अगर रहे तो उनसे पूछताछ कर सकते हैं फिर उनके फ्रेंड्स रहेंगे उनसे बात कर सकते हैं हम लोग
7: और अगर आप किसी पोजीशन पे खड़े हो जैसे ये सपोजिंगली ये घर है आपको यहाँ पोजीशन लेनी है तो आपको डे वन जब आपका पोजीशन डे वन है आज एक घंटे पहले आके या दो घंटे पहले आके देखना है कि कहाँ आप अपनी पोजीशन मेंटेन कर सकते हो जैसे अब ये घर है ये कॉर्नर हाउस है आप यहाँ पर रह सकते हो यहाँ पर चाय वाला है यू कैन ईजिली स्टैंड यहाँ पर दो घंटे तीन घंटे भी रहोगे कोई नोटिस नहीं करेगा सेकेंड थिंग ये देखना है कि उस घर में या उसके बराबर वाले घर में सीसीटीवी तो नहीं है आजकल मोस्टली हाउसेज में सीसीटीवी है तो अगर सीसीटीवी है तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सीसीटीवी के एक्सेस में नहीं आना चाहिए आपकी पोजीशन वहाँ हो कि सीसीटीवी आपको कैप्चर ना कर सके
2: It's time for the rookie detective to put her skills to the test.
6: नमस्ते मैं काजोल बैंक से हूँ लोन जी मैम आपका कोई लोन नहीं है वेरिफिकेशन के लिए आई हूँ आपके पास में कोई रहते हैं उन्होंने लोन लिया है तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल चाहिए था हाँ हाँ हाँ
8: हाँ
6: ओके तो यहाँ पे रहते ही नहीं है
8: मम्मी पापा तो उनके यही रहते हैं
6: हाँ हाँ
8: रहता है।
6: हाँ हाँ
8: रहता है।
6: और उनकी मदर
8: मदर तो उनकी
6: हाउस वाइफ है ओके हाँ, उनकी हाँ उनकी मदर उन गारंटर है हाँ
8: पहली वाली आंटी के बारे में पूछ रहा
6: समझी नहीं मैं
8: तो है हाँ पहली वाइफ थी
6: ओके
8: वो 8 साल हो गए
6: हाँ हाँ
8: अब जो है सेकंड मॉम
6: हाँ उनका नाम क्या है
8: उनका नाम है
6: ओ
8: अब तो पापा से भी नहीं बनते
6: अब पापा से भी रिलेशन अच्छे नहीं है
8: अच्छे नहीं है साल दो साल में एक दो बार आ गया
6: हाँ हाँ
8: बाहर गली में तो लोग घूमते फिरते
6: हैं हाँ हाँ
8: हाँ हाँ पे नहीं रहता है हमारा गड्ढी में जाता रहता है मतलब घूमता फिरता रहता है
6: कोई बात नहीं मैडम थैंक यू डिटेल्स देने के लिए आपके समय के लिए धन्यवाद
2: Parents can choose how deep they want to dig. Most

0: ग्रेजुएट 90,000 पर मंथ कमाता है। कोई सज्जन बात करना चाहता है? कोई सज्जन?
1: In the halls of this temple, an ancient tradition is taking a leaf from stock market trading floors. On offer is a low-cost community matchmaking service for Hindu families.
0: मांगलिक लड़का 33 साल 5/11 मई 92 बीटेक पीजीडीएम सर्विस एमएनसी 9 लाख का पैकेज।
1: Interested parents of prospective brides and grooms come together to see if the match is right. As rural Indians migrate to urban centers, old village connections are lost. Settings like these have become a trusted way for parents to find the right partner for their child.
2: NRI ladki UK London mein working hai. Sonam Sharma Punjabi family June 91 born 34 saal कद 5 फिट 6 बीटेक इन कंप्यूटर साइंस 80,000 पाउंड ग्रेट ब्रिटेन पाउंड सालाना पैकेज है। कोई सज्जन बात करना चाहता है? कोई सज्जन?
3: वी अनाउंस मिस्टर सो एंड सो, एनी गर्ल इंटरेस्टेड इन दैट बॉय? They look whatever. If there's nobody interested, then we pass. The next kid. Same way, left side. People are meeting and we haven't seen anything wrong, obnoxious, nothing. We are very simple here and we help people to get the kids registered.
4: मुझे दो एक महीने हो गए यहाँ आते हुए और बेटे के लिए मैं ढूंढ रहा हूँ रिश्ता। तो अच्छी जगह है, यहाँ पर आपस में सब मिलते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, पहचान लेते हैं, देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। और सबसे अच्छी बात तो यही है, पुराने ज़माने से अलग तो नहीं है, थोड़ा सा तरीका बदल गया। अरेंज मैरिज तो सबसे अच्छा है, अरेंज मैरिज तो सबसे अच्छा कल्चर है। लव मैरिज के अंदर तो जब प्यार किसी से हो गया, लव हो गया, तो उसके बाद तो कोई कल्चर ही नहीं है।
1: But while tradition offers a safety net, stepping into the shadows can lead to a trap. A blackmailer is holding a prominent businessman to ransom. He has a compromising video of the businessman. In exchange for this video, he wants $200,000 in cash. The detectives use a delaying tactic. They deliberately miss the deadline.
5: No. मेरे को अभी एक घंटे तक तूने
6: तुमसे होते हो रहा क्या? अरे तू बैठ सोगी सो जा ब्लैकमेलर।
5: रात में सुबह में जहां मर्जी मिल लेंगे, पेमेंट आएगी मेरे पास 100% आएगी।
6: मेरे को सुनने तो क्या बोल रहा हूँ, वो बैठ जाना चाहता है तो काबू एक उसी दिन एक बैठे थे बैठे थे एक तो करते रिक्वेस्ट आप ये बोले उसको बैठ के सेंड नहीं करो।
1: The businessman gets the blackmailer to agree to a reduced sum of $27,000. The detectives have just 2 days to find the extortionist. Otherwise, the victim will have to cough up the cash. The clock is ticking. The blackmailer's wife is the businessman's former office manager. She was in charge of collecting payments. The enterprising employee diverted company funds into her own bank account and was caught red-handed. She then makes a proposition.
7: Now she started crying, right, that, you know, my husband beats me up, he, you know, he abuses me at home, you know, he needs 15,000 rupees every month from me, what do I do, like, you know, and I cannot return the money back to you, but, you know, I'm ready to do anything that you want me to do for you.
1: The businessman thought he was being compensated for his loss with a fling. But she was 2 steps ahead. While he was booking a hotel room, she plotted.
7: And this time when she met him there, you know, she asked her client to remove his clothes. Right? Once he removed his clothes, you know, she took out his mobile and started shooting our client.
8: Five addresses of a subject.
1: If the video goes public, it would destroy his marriage and career. The detectives need an address.
9: What have you identified?
1: So far, nothing.
10: I tell you. उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो ये सोच रहा है कि वल्नरेबल टारगेट है 65 ईयर ओल्ड पर्सन है और अब ये फंसा हुआ है कर तो कुछ सकता नहीं है उसकी वाइफ को पता है कि इसकी वाइफ है इसके बच्चे हैं उसको ये मालूम है कि अगर इसने कुछ भी किया तो ये हील बी ना बिगर सूप सो लेट अस से इफ देयर इज एनी क्राइसिस एट ऑल इट बिकॉज वी आर डीलिंग विद क्रिमिनल्स वी आर यू नो डीलिंग विद द डार्क सीक्रेट्स ऑफ पीपल वी आर डीलिंग विद डार्क थिंग्स ऑल द टाइम
1: While the team hunts for the blackmailers, a different kind of tragedy plays out. A housewife, married for 12 years, has just made a startling discovery about her husband.
11: Yeah, hi. Please tell me.
12: Shockingly, I found out that he's not straight and he's a gay.
11: After 12 years of marriage,
12: Daughter. Yeah.
11: So how come you have a daughter?
12: I'm 5 years.
11: Oh, okay.
12: But now when I realize this, I'm thinking I cannot live with this lie. I have to end this marriage.
1: To get custody of a daughter and parental support, she needs more than just suspicion. She needs evidence, admissible, undeniable proof. The team decide to hide a listening device in the family car.
7: Brother, जो हमें कार में bug use करना है ना, वो ये GSM bug use करेंगे. ठीक है. और इसका ना मुझे battery size increase चाहिए. ठीक है. क्योंकि मुझे चाहिए इसमें कम से कम 3 दिन का battery. ठीक है. तो ताकि वो जो ना उसको replace अगर करे, 3 दिन में काफी recording आ जाती है. Right? हमें client को देने से पहले हमें test करना है. तो हम इसको हमेशा क्या करते हैं देने से पहले अपनी गाड़ी में लगाए जरूर कुछ टेस्ट करते हैं खुद की हाउ इज इट वर्किंग हाउ इज फंक्शनिंग
13: बस देखना स्लाइड ना हो स्लाइड आराम से हो जाए
14: तो अगर हम लीगली देखें सो वी आर सेफ क्योंकि उनकी अपनी कार है अपनी कार में वो खुद लगा रही हैं सो हम और उन्हीं को एक्सेस दे रहे हैं वो खुद ही सारी रिकॉर्डिंग्स चेक करेंगे
15: और हम जब भी वर्क प्लेस करते हैं क्लाइंट की कार में और क्लाइंट की प्रेजेंस में ही करते हैं नॉट इन हर एब्सेंस सो साथ में है तभी हम प्लेस कर रहे हैं सो इन दिस केस हमारे पास सिर्फ 2-3 मिनट्स हैं तो हमें बहुत जल्दी जल्दी वर्क प्लेस करना होगा

0: What makes Rajasthan attractive for solar power is straightforward. Abundant land and some of the highest solar radiation in India. But as solar farms expand closer to villages, the land becomes a point of negotiation. Developers approach landowners, often through brokers, offering either a full buyout or a 30-year lease. Kishanji says he's been approached before. He refused to sell or lease them. But his decision to hold on to his land is not only for what it means to him, it is economic as well.
1: मेरी फसल होती है बीघे में मतलब 50,000 की तो 40 बीघा जमीन है 20 लाख की मेरी फसल होती है इसमें
2: बाजार से
1: गुरुदा ये देता है साल का 6 लाख रुपया तो मैं क्यों दूं इसको दूसरी बात मैं आज बेचूं मेरी जमीन है तो रेट चल रहा है 3 लाख रुपया बीघे का यहां रेट चल रहा है तो भाई रकम मान लो मैं उठा के 1 करोड़ 20 लाख रुपया बनता है मेरी खेत का इसका मेरो करोड़ रुपया रो धन में 6 लाख में उसको आदिन क्यों
0: As developers acquire more land in the villages, they also need access routes, roads that cut through villages and farmland.
1: ये रास्ता है तो अपनी धरती तक ही है तो ये रास्ता बंद कर दिया आ गया हूं रास्ता बंद कर दिया तो खेत जाने का रास्ता ही नहीं रहेगा तो जाएगा कहां से मैं इसलिए नहीं दिया ये देता है 15,625 रुपया बीघे का साल का किराया देता है इस जमीन का
0: As more land is acquired, the remaining farmers begin to feel the pressure to give up theirs.
1: धीरे-धीरे हमारी जमीन है नहीं जो कि सारी लेने की कोशिश करता है मान लो कहीं ने ठगा के कहीं ने डरा के कहीं ने धमका के मान लो ऐसे करके सारा की जमीन लेनी चाहता है अब ये सिर्फ मारा एक खेत बचा है मान लो
0: Raman Lal Chowdhury is Kishanji's nephew and neighbor. Unlike his uncle, he agreed to lease his 6-acre land to a solar developer.
3: ये मेरी जमीन है, मेरे दादा की जमीन थी। कृष्णा राम के पास पड़ोसी हूँ मैं ताऊ का लड़का हूँ। ये कंपनी वाला आया, हमारे को कृष्णा राम ने बहुत मना करा था। मेरे को बोला काम दे देंगे मैं, आपको नौकरी दे देंगे तीन जनों को। नौकरी नहीं दी, प्लांट में काम ही नहीं दिया।
0: Raman took the deal of leasing the land for about $160 a year. It is far less than what a farming family of five might spend in a month. His current income is also significantly lower than what the land once yielded.

0: But even as solar development expands, not all nearby villages have access to electricity. At night, Bhagirath, one of Kishanji's brothers, returns to a house that still has no grid electricity. While transmission lines may run nearby, extending power to scattered desert settlements has been a challenge.
1: चारों तरफ सोलर प्लांट लगा हुआ है, घर में लाइट नहीं है। वो कोई छोटी मोटी लाइट बैटरी बूटी से उसे काम चलाते हैं और चारों तरफ सोलर की लाइट है। हमारी लाइट डानी नहीं मकान में लाइट।
0: His family relies on a small battery-powered light from a portable solar panel, enough only for basic needs.
1: नहीं है लाइट वजह से हमारे फसल नहीं ज़्यादा उत्पादन कर सकते हैं। लाइट होती तो फसल ज़्यादा उत्पादन कर सकते हैं।
0: For families like Bhagirath's, the benefits of mass solar farm expansion that's happening in his very own village remain out of reach. In Norang Desar village, another challenge shapes daily life: water. Santosh and Suraibane begin the day by walking more than 2 kilometers to fetch water for their families and livestock.
2: हमारे पानी की बहुत दिक्कत आ रही है। हमारे पास में गांव के पास में पानी कभी कभी मिलता भी नहीं है।
3: दूर जाके लाना पड़ता है, लगभग 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर दूर जाके पैदल जाके लाना पड़ता है।
0: In many drought-prone parts of India, water is still delivered by tanker trucks, a temporary lifeline for villagers when local supplies run dry.
2: हमारे टैंकर से मंगवा रहे हैं और टैंकर 5-7 दिन नहीं आ रहा है। गर्मी में तो बहुत ही सारा ऊंट और पशु है, वो भी तीसरा रहता है।
0: With the arrival of solar farms, that limited water supply is now shared. Panels need to be cleaned regularly, especially in the dusty desert.
3: हमारे यहाँ एक समस्या बहुत बड़ी समस्या है कि हमारे यहाँ सोलर प्लांट होने के कारण हमारे यहाँ टैंकर है वहाँ चले जाते हैं, यहाँ पर नहीं आते हैं। तो ये बहुत बड़ी आपत्ति आ रही है हमारे लिए कि पानी यहाँ नहीं पहुँच रहा है हमारे लिए।
0: In the Thar Desert, where water has always been scarce, the demand for solar is placing new pressure on an already limited resource.

0: Rajasthan's solar expansion is transforming the desert landscape. The rapid growth has raised difficult questions about land for some. At the same time, solar is also bringing clear benefits. Farmers like Ram Dayal Chowdhury are seeing that firsthand.
1: ये प्रधान मंत्री कुसुम योजना है इनमें हमारे को लाभ मिलते हैं छोटे मोटे किसानों के लिए बहुत फायदा हुआ है मेरे पास 15 बीघा जमीन है उसमें मैंने ये सोलर पंप लगाया हुआ है
0: Ram receives subsidies to install solar pumps for irrigation, reducing his dependence on unreliable electricity.
1: इसी फायदे की वजह से मैंने ये लगाया है। ये 10 पंप और 10 किलोवाट का सोलर पंप है। करीब इनकी लागत 4.5 लाख रुपया से लगवाया है ये। इनसे फायदा हमारे को होता है ये मतलब बिजली नहीं लगती है बिजली का हमेशा बिल भरना पड़ता है इनका एक बार पैसा लगा हमारे को
0: Instead of monthly bills, it's a one-time investment. And over time, that has made a difference.
1: वो फायदा हुआ हमारे को। अभी मेरे को एक बार ही पैसा देना पड़ता है। ये 10 HP की मोटर चल रही है हमारे यहाँ। इनका कोई खर्चा उर्चा नहीं है। ये 9 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक बराबर चलती है कंटिन्यू।
0: More than 2 million farmers across India currently benefit from this system.
1: कुल मिला के ये मतलब राजस्थान के अंदर ये फायदेमंद चीज है ये हमारे पहले लाइट से चलता था लाइट में हमारे वो परेशानी ज्यादा होती थी वो 6 घंटा लाइट देते थे कभी कटौती कर देते थे कभी 4 घंटा भी कर देते थे अब हमारे को मतलब 14 घंटा गर्मी में 12-14 घंटा तक सोलर पंप से लाइट चलती है हमारे को डबल फायदा हो गया
0: फॉर फार्मर्स लाइक राम सोलर पावर हैज बिकम अ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन